अस्सलाम वालेकुम सामिनम, सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज यकम अगस्त परोस हफ्ता है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने अपनी नशियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्ज के अलावा तुर्कसात 3A ईस्ट और 4A वेस्ट समेत हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिला प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारे प्रोग्राम हसब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान उपल।

शुआफ ने बताया इस दौरान 131 ड्रोन्स को फजाई दफाई निजामों ने तबाह कर दिया। हमलों में 2 अफराद हलाक और 11 अफराद जख्मी हुए। रूसी वजारत दफा ने ऐलान किया मकामी वक्त के मुताबिक कल शाम 8 बजे से आज सुबह 7 बजे तक यूक्रेन के 276 ड्रोन्स को फजाई निजामी दफाओं ने गारा कर दिया है। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। एचटीके के 26वें ग्रुप यूनिट ने सूडानी फौज के सामने हथियार डाल दिए। सूडान में नीम रैपिड फौज से ताल्लुक रखने वाले यूनिट अपने तमाम अहलकारों फौजी साजो सामान समेत फौज के सामने हथियार डाल दिए हैं। सूडान की सरकारी खबर एजेंसी न्यूज एजेंसी सूडान के मुताबिक यूनिट रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के 26वें ग्रुप के ढांचे का हिस्सा था। तमाम हथियार डालने वाले अफराद की तादाद या इस हवाले से किए गए सामान की किस्म का इंकशाफ नहीं किया गया। एजेंसी ने इतला दी कि अल नूर अल कुबा के नाम से मशहूर ग्रुप को सूडानी फौज जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के आला अफसरान ने अल नूर अहमद आदम के सपुर्द किया है। ट्रंप ने यूक्रेन के लिए पैट्रियट मिसाइल बनाने के अपने वादे को वापस ले लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक किया वाशिंगटन अभी तक यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने की इजाजत देने पर इत्तफाक नहीं किया लेकिन इस पर बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा अमेरिका को दूसरों को अपना जदीद मिसाइल सिस्टम तैयार करने की इजाजत देने के बारे में बहुत मुहतात रहना चाहिए। इनका ये रिमार्क्स उस वक्त सामने आया जब उन्होंने पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत के दौरान ये इशारा दिया था कि यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए लाइसेंस हासिल कर सकता है। तुर्की 36 मेडल्स के साथ वर्ल्ड कंप्यूटर की बोर्ड चैंपियनशिप पर गलबा हासिल कर रहा है। तुर्की की कौमी कंप्यूटर की बोर्ड टीम इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में मुनाकिदा 2026 इंटर स्टेनो वर्ल्ड कंप्यूटर बोर्ड चीफ चैंपियनशिप में दर्जाबंदी में सरफरिस्त रहने के बाद 36 तमगों के साथ वतन लौट गई है। 25 से 30 जुलाई के दरमियान होने वाले चैंपियनशिप में 34 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इंटरस्टैनो तुर्किया के मुताबिक ताज़ा तरीन नतज के साथ तुर्किया के 40 आर्मी रिकॉर्ड समेत आर्मी चैंपियनशिप की तादाद बढ़कर 145 हो गई है। फीफा के सदर जियानी अनफांतिनो ने कहा है कि आर्मी फुटबॉल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वसी मुखालफत के बाद आर्मी कप में निजी सरमाकारों को शेयर फरोख करने के मनसूबे को कल अदम करार दे दिया है। इन्फांतिनियो ने जुमे को कहा तमाम आरा को गौर से सुनने के बाद ये वाज हो गया कि मनसूबा ऐसी तकसीम पैदा कर चुका है जो हमायत की सतह के बावजूद इब्तदाई तौर पर मुकर्र करदा मकसद के मफाद में नहीं रहा। फीफा के सदर जियानी इन्फांतिनो ने एक बयान में कहा हमारा मकसद हमेशा से है और हमेशा रहेगा इत्तेहाद और बेहतरी लाना अव्वलीन फर्ज है। फीफा ने मंगल के रोज ऐलान किया था वर्ल्ड कप और अपने दूसरे टूर्नामेंट के इंतजाम के लिए 20 अरब डॉलर की एक जेली कंपनी कायम करने का मंसूबा रखता है जिसमें बैरूनी सरमाकारों को 20% तक का शेयर पेश किया जा सकता है। इस फरोख से ज्यादा 4.2 अरब डॉलर हासिल हो सकते थे। UEFA और यूरोप की तमाम 55 एसोसिएशन ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया और खबरदार किया अगर इससे पीछे न हटा गया तो वो फीफा के मुकाबलों का बायकॉट करेंगे। कंका काफ और इसकी 41 एसोसिएशन ने भी शफाफियत गवर्नेंस और मुनासिब मशावरत के फुकदान के हवाले से खदशा जाहिर करते हुए इस माहदे को और मनसूबे को मुस्तरद कर दिया है। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन जो 47 एसोसिएशन की नुमाइंदगी करती है ने UEFA और कंका काफ के साथ मुखालफत में शामिल होकर इसकी हमायत नहीं की। ये तीनों कन्फेडरेशन मिलकर फीफा के 211 मेम्बरों में से 143 की नुमाइंदगी करते हैं। अफ्रीकी फुटबॉल कन्फेडरेशन ने तजवीज़ को बराह रास्त मुस्तरद तो नहीं किया मगर कहा है कि वह आइंद हफ्ते एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस मनसूबे का जायजा लेगी। ओशिनिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने भी कहा इस मसले पर अगस्त के एग्जीक्यूटिव इजलास में बात करेगी। इसके साथ ही इस तुर्किया से खबरें खत्म हुई। तो आई सामिन सेजन अक्सू के आवाज में एक तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल हैं हर कैस यार आलम।